0: ब्रैम्पटन वालों, हुन महंगे परफ्यूम आते $400-500 लॉन दी बिल्कुल लोड नहीं। रॉयल परफ्यूम्स दी हो चुकी है ग्रैंड ओपनिंग। स्विट्जरलैंड तो इंपोर्ट कीते ऑयल्स नाल तैयार डियोर ते शनैल वर्गी सेम फ्रेग्रेंस जो चले 8 घंटिया तो भी वध। हर परफ्यूम सिर्फ $50 विच अते रेडियो उड़ान दे स्रोतियां लई खास धमाका। बाय टू गेट वन फ्री यानी $100 चे 3 परफ्यूम ते नाल एक तोहफा रेडियो उड़ान प्रभ संधु दा रेफरेंस देन ते। अपने आप नू फुल्लां दी तरह महकाओ। आज ही आओ Unit 9, 1 Regan Road ब्रैम्पटन सिख संगत गुरु घर दे नेड़े जा ऑर्डर करो www.royalperfumes.co ते कॉल करो 4373150701।
1: तुसी सुन रहे हो रेडियो उड़ान प्रभ संधु दे नाल। प्रोग्राम दे इस हिस्से नू स्पॉन्सर कर रहे ने BDS पेंटिंग, एक वधिया पेंटिंग सर्विस। BDS होम पेंटिंग हाजिर है तुहाडे घर बेसमेंट ते कमर्शियल यूनिट नू नवा बनाउण लई, नवे रंगां नाल चमकाउण लई। प्रोफेशनल पेंटिंग सर्विसेज चाहे होवे स्प्रे पेंटिंग, किचन कैबिनेट रीफिनिशिंग, ड्राईवॉल रिपेयर ते स्टको रिमूवल, डेक ते फेंस पेंटिंग, फिनिश्ड बेसमेंट, हार्डवुड ते लैमिनेट फ्लोरिंग। घर कमर्शियल या इंडस्ट्रियल हर किस्म दी पेंटिंग विच माहिर। अज ही कॉल करो BDS पेंटिंग दे जुगराज सिंह होना नू 905-965-6311 905-965-6311।

0: ट्रक करा लिया जदो वेखो एदियां कमानियां इटलियां रहंदियां की करा
1: मैं सुनया जी अपने पंजाबी भरावां जे अते गैरी ने खोल दित्ती है GTA विच ट्रकां दे स्प्रिंगां दी पहली शॉप PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट
2: पहुंचो 5330 ब्रेडको बुलेवर्ड मिसीसागा मेन इंटरसेक्शन डिक्सी एंड मैथसन
0: इथे टी लाइन लेजर मशीना नाल अलाइनमेंट ते नवे स्टाइल दी मशीना नाल बैलेंसिंग कीती जांदी है इन्ना ही नहीं 4 व्हीलर्स अते 18 व्हीलर्स दे टायर्स दा खास प्रबंध भी है जे तुसी ट्रकां ते ट्रेलरां दी कमानियां दा तसल्ली बख्श काम करवाना चाहुंदे हो
1: कॉल करो जेएन गैरी नू
0: 905-459-5533
1: 905-459-5533 ते
0: PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट
3: Thank you, Thai, Satanam, Tata Pure, Nepo, Neve, Ata.

मेरे काज करे मेरा सतगुरु, मैनू चिंत ना कोई, करने हारा कर दापे, जो होना सो होए। सत श्री अकाल जी, गुड मॉर्निंग। तुसी सुन रहे हो तुहाडा अपना रेडियो शो रेडियो आवाज़, ते मैं हाँ तुहाडे नाल संतोष कौर, ते तुहाडा सारिया दा निग्गा निग्गा स्वागत तुहाडे ही अपने शो रेडियो आवाज़ ते।

0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 6747702 V23।
1: License number 10394.
2: Are you paying too much for insurance? Let me help you save. Whether you need auto, home, truck, or business insurance, I compare quotes from multiple insurance companies to find the right coverage at a competitive price. For fast quotes, personalized service, and coverage you can count on, you can call or text me at 647-919-1002.
3: You're listening to Gumtaz Radio on AM 530 from 10 to 11 a.m. Monday to Friday with Jazz Tagar, your favorite show.

0: 8773sofastudio.ca. थैंक यू जी।
1: मैं नवा कार लिया है, तेनु पता है प्रॉपर्टी इतनी महंगी है, नाले मैं एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ली है, एक भाई मैं बेसमेंट भी बनाई है ब्रम्पटन वाले घर दी, नाले मैं सोचता हूँ वॉशर एंड ड्रायर भी चेंज कर ही दईए, हुन समझ नहीं आ रहा अप्लायंसेस कित्थों लईए।
2: हो जी इहदे च समझण वाली केड़ी गल है, सारे कमां लई इक्को जगह, चलो मिसेस अगा स्टील ते अप्लायंस जंक्शन ते, इहदे प्राइस अते सर्विस नु कोई बीट नहीं कर सकता, तुसी 6 मंथ तक दी पेमेंट भी बनवा सकदे हो, सारे ब्रांड्स दी ऑथराइज्ड डीलर्स भी ने, मिसेस अगा स्टील ते अप्लायंस जंक्शन, कॉल 905-450-0054
3: जे तुसी जॉब दी भाल कर रहे हो ता कैन ट्रक नू कॉन्टैक्ट करो, थोड़े कोल AZL लाइसेंस होना चाहिदा है, थोड़ा CVOR बिल्कुल क्लीन होना चाहिदा है, 2 साल दा एक्सपीरियंस भी होना चाहिदा है, कॉन्टैक्ट लई नंबर है 6472927557 6472925757।
4: भाई ये ट्रक ता हुण मैं चंगी तरह चलाउण लग पिया, हुण सोचदा वी कोई यूज ट्रक ही लै लवां, पर समझ नहीं आउंदी वी कित्थों लवां।
5: ओ इहदे च सोचण वाली कीड़ी गल आ, ईगल ट्रक सेल्स वाले बिल सेखू नूं कॉल कर, ओए ओहदे तो वधिया कोई नहीं।
6: जी हाँ, जे तुहानूं यूज ट्रक दी लोड है ते तुहाडी पसंद दा मेक एंड मॉडल दा ट्रक तुसीं इहनां तों लै सकदे हो, अपना ट्रक विचले भी याद रखो ईगल ट्रक सेल 17 स्ट्रेटन एवेन्यू ब्रैम्पटन, कॉल बिल सेखो 416-819-6000।
7: तड़के उठ के जा बना दे।

0: आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
1: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
0: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
2: रेव सिंह कैनेडियन जंपल साडा अपना रियल्टर, कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वास्ते पूरी हिस्ट्री कट के प्रॉपर्टी दी पूरी खोज करने तो बाद फिर तुहाडी प्रॉपर्टी लिस्ट कर दिया ने। रेव सिंह होम लाइफ सिल्वर सिटी दे एक्सपर्ट राइटर रेव सिंह दी तिखी नजर तुहाडी प्रॉपर्टी वेचण अते खरीदण विच तुहाडी हेल्प कर सकदी है। नवे प्रोजेक्ट दे माहिर अते इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दे एक्सपर्ट रेव सिंह नूं फोन करो 6477409600, 647-740-9600 ਦੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੈਲਟਰ ਰੈਵ ਸਿੰਘ।
3: ਲਓ ਜੀ ਚੱਕੋ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਰੋਸਰੀ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਫਰੂਟ ਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਚਾਰੋਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ 15 ਫੈਂਡੋਵੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 45 ਡਸਟ ਡਰਾਈਵ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 9985 ਮੈਕਵਿਨ ਡਰਾਈਵ ਯੂਨਿਟ 9 ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇੰਡੀਅਨ ਫਰੂਟ ਲੈਂਡ, ਤੇ ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਨਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 1465 ਮੇਫੀਲਡ ਰੋਡ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ। ਵਧੀਆ ਗਰੋਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫਰੂਟ ਲੈਂਡ, 9054569900।
4: HK Movers का हो साथ, लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए टेंशन लेने की नहीं है बात। HK Movers, होम ऑफिस अपार्टमेंट्स एंड डिलीवरी, बिग और स्मॉल, वी मूव इट ऑल। वी ऑल्सो शिप कार्स, वी ऑल्सो डू स्टोरेज। 30 इयर्स एक्सपीरियंस, वी सर्व विद अ स्माइल। HK Movers, गिव अस अ कॉल। मिस्टर हरमिंदर, 416-524-6704, 416-524-6704।
5: हासल फ्री मूविंग के लिए HK Mover।
2: ਏ ਟੂ ਜ਼ੀ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਟ, ਬਈ ਵਾਹ ਕਿਆ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੱਕੀ ਭਾਜੀ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਟ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਆਂਢ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਟ ਵਾਸਤੇ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਟ ਵਾਸਤੇ ਏ ਟੂ ਜ਼ੀ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਟ, 416-720-7073, 905-720-7073 ਦੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
6: You're listening to Punjabi Versa, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m. For more information, call 647-448-1000.
7: Toronto's number one station, AM 530.
8: Punjabi Versa!

0: September 18, 7 PM at the Living Arts Center, Mississauga.
1: पहला आया सी बड़ी मोहब्बत दी थी, उम्मीद कर रहा हूँ इस बार भी तुझे आशीर्वाद दोगे.
2: वे आ जा तो मैं नाल नचिए, नचिए बाहा चुबाहा पा. वे आ जा तो मैं नाल नचिए.
0: For tickets, visit Ticketmaster. For information, call Singh Harjeet at 647.
3: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
4: हेलो
5: हेलो कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल.
4: हां जी कटारिया टूर एंड ट्रैवल.
5: इंडिया दी टिकटां चाहिदियां सी.
4: ओ इंडिया की तुसी जित्थों मर्जी दी टिकटां ले लो. इंडिया किथे जाना?
5: चार टिकटां दिल्ली दी ते दो अमृतसर दी. मिल जानगियां?
4: मिल जानगियां, बिल्कुल मिल जानगियां. दिल्ली मुंबई अमृतसर एहो ता साडी स्पेशलिटी है. बस दसो की टिकटां कदों दी चाहिदियां ने. ते हां स्पेशल टूर पैकेजेस ते हनीमून पैकेजेस भी साडे कोल अवेलेबल ने.
5: पर उसे मन सर्विस ते सब तो वधिया रेट्स ले इक्को इक ना कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल. बुकिंग ले आज ही कॉल करो 905-678-1200 कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल.
6: 32-55-80-98
5: गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो?
6: काउंटिंग नहीं, ए ते 32-55-80 ते 98 इंच दे टीवी ने जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने. इन्ना कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे, हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते. 32-98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने.
5: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी. कॉल 905-450-2828 905-450-2828.

मेरा आफ्टरनून, वेलकम टू डेव टाला शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। आशावादी हैं, उम्मीद करते हैं कि तुहाडा अज दा दिन अच्छा गुजर रहा होगा। साडी कोशिश रहेगी अगले दो घंटिया विच नैशनल इंटरनैशनल खबरां नाल तुहानू जोड़ के रखिए। अगे चल के एक बजे वतनों दूत तुहाडे लई पेश कीता जाएगा, सुखी निज साहब आउणगे और उदे नाल नाल साडे स्टूडियो दे नंबर हुण तों लैके दो बजे तक रहणगे 9057990999। छतरी छाता रिपोर्ट हाजिर है जी। अज सूर्य सिंह 652 दे बाहर आया, 736 ते चले जाणा। मामा चंद सिंह ए लवारस जिहा हैगा, 7:24 ते आ गया सवेरे ते 743 ते चले जाणा। कहिंदे आ चंद रात नूं चढ़दा, रियली। खैर अज दा तापमान 24 डिग्री रहेगा, सूरज चमकदा रहेगा। कल नूं 26 डिग्री, मिक्स ऑफ सन एंड क्लाउड। संडे नूं मिक्स ऑफ सन एंड क्लाउड 27 डिग्री। मंडे नूं 22 डिग्री तापमान रहेगा, सूरज चमकदा रहेगा। और ट्यूजडे वेनसडे दोनों दिन बदलवाई नाल हल्की हल्की बारिश पेगी, तापमान 24 डिग्री। स्पोर्ट्स दे विच अज ब्लूजी वाले भी खेलणगे शाम नूं, थोड़ियां गेमां रह गईयां और दे आर वन गेम बिहाइंड इन अ प्ले ऑफ। कल मैच शुरू हुए है जी अपने NFL दे, सैन फ्रांसिस्को 49ers ते LA रैम दी जिहड़ी गेम आ मेलबर्न आस्ट्रेलिया च हुई और उत्थे 49ers 27-7 दे फर्क नाल जित्ते। जिहड़ी सेंट्रल बैंक है 21 यूरोपियन मैंबरां दी, उन्होंने आपका इंट्रस्ट रेट 0.25% वधा दिते ने। यूक्रेन तो जेलेंस्की इत्थे आया सी। यूक्रेन अते कैनेडा ने 100 साल लई एक डील बनाई।

संपर्क कर ली नंबर ने 416-677-0609 ऊपर वाले का दुआ कर मरे फिर मिलेंगे। हैव अ वंडरफुल डे, हैव अ ब्यूटीफुल डे, हैव अ ब्यूटीफुल वीकेंड।

0: होता है कि ठीक है दिस हाउस इज अवेलेबल बिकॉज अ पावर ऑफ सेल, है ना, बहुत सारी जो है चीजें होती हैं. अच्छा मुकेश जी, अगर हमारे किसी भी बहन भाई को, किसी भी लिसनर को अगर अर्जेंटली इमरजेंसी फंडिंग की जरूरत पड़ गई है, सो कैसे आप उनका जो है साथ दे सकते हैं, हाउ क्विकली यू कैन अरेंज द मनी, प्लीज ये थोड़ा सा बताइएगा.
1: डेफिनेटली देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इमरजेंसी फंड्स की नीड क्या है आपको, राइट? अभी स्पेशली अगर हमने अभी समर की बात छेड़ी है तो हमने यही इस पर माय एक्सपीरियंस कि समर इज अ टाइम वेर इन एवरी सिंगल फैमिली स्पेंड 1 से 2 हजार और कभी कभी $10,000 भी स्पेंड हो जाते हैं, राइट? सो वेर इन वी कम टू द पिक्चर, जहां पे आपको लग रहा है कि आपके आपके क्रेडिट कार्ड पाइल्ड अप हो गए हैं, आपके पास प्रॉपर्टी टैक्स बिल 2-3 साल से नहीं पे किए, या आपके पास पुरानी कोई लाइबिलिटी अभी तक आपने वो नहीं पे किया, एग्जिस्टिंग सेकंड मॉर्गेज से आप बाहर निकलना चाहते हो, या आपको रिकॉल आ गया कि भाई आप पे ऑफ करो. देखिए इमरजेंसी फंड्स, यस इमरजेंसी फंड्स आपको टाइम आंसर टू योर क्वेश्चन, विद इन 5 बिजनेस डेज आपको पैसे मिल सकते हैं, पहली बात है. अच्छा, ये सबसे इम्पोर्टेंट मसला पता है कि मैं इमरजेंसी फंड्स की बात कर रहा हूँ तो ये सेकंड फाइनेंसिंग है, सिक्योर मॉर्गेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है? ये सिक्योर मॉर्गेज में अक्सर आपने देखा होगा कि लोग 12-14% इंटरेस्ट रेट देते हैं. अच्छा, उस पर लैंडिंग ब्रोकर फी होती है, लॉयर फी भी होती है, अप्रेजल कॉस्ट भी होती है. किरण जी, मजे की बात यह है कि जो प्रोडक्ट मैं बताना चाह रहा हूँ उस पे इंटरेस्ट रेट ओनली 6.99% है.
0: वाओ.
1: और मजे की बात सुनिए दूसरी, इसमें अप्रेजल नहीं है, यू डोंट हैव टू पे फॉर अप्रेजल. और तीसरी मजे की बात सुने, नो लीगल फी हैव टू पे.
0: ओके.
1: अगर आप, हमने ये भी देखा है कि काफी होम ओनर अगर एग्जाम्पल 100,000 लेते हैं तो उनको फी वगैरह माइनस होने के बाद, लॉयर फी, लैंडिंग फी, ब्रोकर फी, सारी फी होने के बाद पैसे मिलते हैं, राइट? कि इन्होंने 100,000 किया तो उनको 80 मिलेंगे, 85 मिलेंगे. बट यहाँ अगर आपने 100,000 अप्लाई किया तो पूरा 100,000 ही मिलेगा आपको. तो सवाल ये कि वो कॉस्ट कहाँ है, क्लोजिंग कॉस्ट कहाँ जाएगी? तो क्लोजिंग कॉस्ट आपको अपफ्रंट नहीं पे करनी, आपको एट द टाइम ऑफ जब टर्म पूरा हो जाएगा, चाहे 1 ईयर टर्म हो, चाहे 2 ईयर टर्म हो, चाहे 3 ईयर टर्म हो, टर्म के आखिर टाइम पे करना है, नॉट इन द बिगनिंग. सो आई रिपीट माई सेल्फ, वो होम ओनर जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि रीजनेबल प्राइस हो, मंथली पेमेंट बहुत आसान हो, छोटी किस्त हो, जो जिनके पास अप्रेजल देने के भी पैसे नहीं है, या वो अपने आप को दे डोंट वांट टू गो इनटू दिस ऑल एक्सपेंसेस, नो अप्रेजल फी, नो लीगल फी, नो अपफ्रंट क्लोजिंग कॉस्ट. और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, 6.99% इंटरेस्ट रेट है, पेमेंट भी बाई वीकली है, छोटी पेमेंट है, चाहे 100,000 चाहे हो, चाहे 200,000. इसमें दो कंडीशन है, मिनिमम अमाउंट 10,000 है, मैक्सिमम जो है 250,000 है
0: जी,
1: राइट? पहली बात. दूसरी बात है कि क्रेडिट स्कोर किसी एक का मिनिमम 600 होना चाहिए. अगर आपकी स्पाउस का अगर 550 है और आपका 600 है, वो चलेगा. दो चीजें. तीसरी इम्पोर्टेंट बात है, घर में इक्विटी 75% तक होनी चाहिए. और आपके पास ये आंसर्स हैं सारे, आई एम हेयर टू हेल्प यू. अगर आपको अपना एग्जिस्टिंग सेकेंड मॉर्गेज आपको परेशान कर रहा है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है, 12-14% है, उस पर हर साल आपको फी देनी पड़ रही है, अगर आप छुटकारा चाहते हो, आई कैन हेल्प यू, आई कैन रिप्लेस विद 6.99% इंटरेस्ट रेट, नो लीगल फी, नो अप्रेजल कॉस्ट. Within 5 business days, the money will be in your account. This is Mukesh Chauhan, mortgage broker from Mortgage Diligent. Number to call me, 647-512-7000, 647-512-7000.
0: ओके मुकेश जी, ये तो बात आपने करी कि ठीक है अगर किसी को, है ना, अगर स्पेशली अगर इस टाइम पे अगर कोई इंडस्ट्री है, जैसे कोई ट्रकिंग इंडस्ट्री है या कोई वैसे बिजनेस ओनर्स हैं हु आर जस्ट स्ट्रगलिंग, है ना, तो आप उनके लिए अगर उन्हें फंडिंग की जरूरत है, बिकॉज इन द बिजनेस टू रन द बिजनेस वी नीड द मनी, है ना, सो फंड्स इज ऑलवेज एसेंशियल्स. सो आप कैसे उन्हें अर्जेंटली फाइनेंसिंग करके या कैसे करके आप उनकी जो है मदद कर सकते हो, अगर हमारे इस टाइम पे ट्रकर भाई बहन या कोई और बिजनेस ओनर सुन रहे हैं? बिल्कुल जी.
1: लेकिन टैरिफ की वजह से ना ट्रकिंग इंडस्ट्री बड़ी इम्पैक्ट हुई है, एज वी ऑल नो, राइट? इसके अलावा साथ साथ इमिग्रेशन इंडस्ट्री भी है, आपकी जो है रेस्टोरेंट फूड इंडस्ट्री है वो भी इम्पैक्ट हुई बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. अच्छा, इन इंडस्ट्री का प्रॉब्लम ये आया है कि इनको अगर आप बैंक से फाइनेंसिंग लेने जाओगे तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस है, आई एम टेलिंग यू द राइट इस इन्फॉर्मेशन. तो चैलेंजेस का मतलब ये नहीं कि आपको मॉर्गेज नहीं मिलेगी, मिल सकती है, बट चैलेंजेस बहुत है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. बट गुड न्यूज ये है किरण जी, अगर आप ट्रकिंग इंडस्ट्री में हैं, आप इमिग्रेशन बिजनेस में हैं, आप फूड इंडस्ट्री में, आई कैन हेल्प यू टू अरेंज द फाइनेंसिंग. चाहे रीफाइनेंसिंग है, चाहे लो क्रेडिट है, बैड क्रेडिट है, कंज्यूमर प्रपोजल आपने किया है, बैंकरप्सी है और आप निकलना चाहते हो, घर में एक्विटी होनी चाहिए. आप ये देखें 80% तक आपके पास एक्विटी है घर में, मतलब आपका अगर मिलियन घर है तो 7 लाख का लोन होना चाहिए और 1 लाख निकालना है तो 80% हो गया ये, ठीक है ना. अगर है, और दूसरी बात ये कि घर की वैल्यू चेक करवानी है, अप्रेजल आपको करवाना है, अप्रेजल के पहर देने के लिए दिक्कत आ रही है, आई कैन बीइंग अ ब्रोकर आई कैन हेल्प यू. आप जो भी फी पे करेंगे, रीफाइनेंसिंग की बात कर रहा हूँ, आप जो भी फी पे करेंगे आपको कॉम्पेंसेट होगी एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग. अप्रेजल कॉस्ट विल बी रीइंबर्स्ड बाय फ्रॉम मी एट द टाइम ऑफ द क्लोजिंग. तो ये आप इसकी चिंता मत करें, ये इंपॉर्टेंट है. आपके पास अगर डेट से बहुत इंटरेस्ट पे कर रहे हो, दो दो साल से क्रेडिट कार्ड डेट्स पाइल्ड अप हो चुके हैं, प्रॉपर्टी टैक्स बिल नहीं पे किया आपने, और जो है मल्टीपल डेट्स की वजह से घर में सेविंग नहीं हो पा रही, देखें घर की सुख शांति बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सब आप जब कर्जा सब एक जगह लेकर आ जाओगे कम इंटरेस्ट रेट पे, ऑटोमेटिकली घर में सेविंग आएगी, घर में भी शांति होगी, हैप्पी लाइफ राइट. और साथ साथ जो है अपनी चीजों को आप मैनेज करना स्टार्ट कर दोगे. मैं बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेट केसेस करता हूँ, मिस पेमेंट है, मॉर्गेज मिस पेमेंट है, क्रेडिट कार्ड पेमेंट मिस्ड है, आई हेल्प, मैं पर्सनली आई टेक लॉट ऑफ टाइम और उनको मेक श्योर करता हूँ कि आपको राइट इन्फॉर्मेशन मिले और प्रोडक्ट आपको अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मिले. 100% कभी भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, बट आई विल मेक श्योर कि आपकी जो नीड के हिसाब से आपको प्रोडक्ट मिले, आपकी लाइफ के अंदर थोड़ी सी और जो है पॉजिटिविटी है, सेविंग होना शुरू हो जाए और ये इस सिचुएशन से बाहर निकले. वंस अगेन मैं मिसेस आगे मैं होता हूँ, मिसेस आगे रोड और डेयरी पे आप मिलना चाहें. सैटरडे को सिर्फ 2 घंटे के लिए अवेलेबल हूँ, 12 से 2 बजे तक. अदरवाइज मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग 10 to 6 PM मिलें, मुझसे बातचीत करना चाह रहे हैं कॉल टेक्स्ट करें. दिस इज मुकेश चौहान, मॉर्गेज ब्रोकर फ्रॉम मॉर्गेज डिलिजेंट. नंबर टू कॉल मी 6475127000, 6475127000. वंस अगेन किरण जी, हैप्पी फ्राइडे आपको और आपकी टीम को.
0: बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच मुकेश जी फॉर शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन विद लिसनर्स, एंड यू टू एंजॉय द वीकेंड. थैंक यू सो मच.
1: थैंक यू सो मच.
0: बिल्कुल जी, मुकेश जी दे नाल गलबात हो सकती है 6475127000, 6475127000 ते तुसी इना दे नाल जेड़ी है जी गलबात कर सकते हैं. और साडे नाल इस टाइम होम्योपैथी दे डॉक्टर अब्रार हुसैन पहुंच चुके ने स्टूडियो दे विच. थोड़ी जी आपां इना दे नाल भी गलबात करदे हां कि अज केड़ी जेड़ी जी चीज ते गलबात करेंगे. स्वागत है डॉक्टर साहब
2: जी. सभी बहन भाइयों को स्वागत, और मैं हूं अब्रार हुसैन, रजिस्टर्ड होम्योपैथ हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर. आज हम बात करेंगे फैटी लीवर पे. फैटी लीवर जो है ये एक लीवर की बड़ी ख़तरनाक डिजीज़ है, और इसमें इन्फेक्शन से ज़्यादा आपकी मैनेजमेंट असरअंदाज हो रही होती है. ये जो सिडेंट्री हैबिट होता है, सिडेंट्री मीन्स के आप फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते, आप जो ये जंक फूड है ये ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आप ऑयली फूड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आप अल्कोहल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, इस वजह से आपके जिगर के ऊपर फैट सेल जो है वो डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं, बैड फैट जो है कोलेस्ट्रॉल. और अगर ये हालत बिगड़ती जाए तो फिर ये फैटी लीवर नेक्स्ट स्टेप में स्टेप्टो हेपाटाइटिस में बदल सकता है. ये अगर मजीद इस पे भी ध्यान ना दिया जाए तो ये फाइब्रोसिस में और फाइनली सिरोसिस ऑफ लीवर, जो कि नहायत टर्मिनल स्टेज है, उसमें खून की उल्टियाँ आनी शुरू हो सकती हैं, उसमें गुनूदगी या अनकॉन्शियसनेस हो सकता है, उसमें सडन अब्डोमिनल स्वेलिंग हो सकती है सिरोसिस में, फीवर या साइन ऑफ जो है इन्फेक्शन भी साथ हो सकते हैं. अगरचे कनाडा ने हेपेटाइटिस बी और सी पे मुकम्मल काबू पा लिया है, लेकिन ये हेपेटाइटिस का वायरस बड़ा चलाक है, उसने एक और चोर रास्ता निकाला जिगर को ख़राब करने के लिए. तो ये उन लोगों को ख़राब करता है जो ओवर यूज़ करते हैं अल्कोहल का. जब अल्कोहल कितनी, ये सवाल आम हमारे जो पेशेंट ठीक हो रहे हैं वो पूछते हैं कि क्या नॉर्मल लिमिट है। सबसे बड़ा इंडिकेटर ये है कि उतनी अल्कोहल जो आपकी अक्ल को जायल कर दे। उसने ना सिर्फ आपकी अक्ल को जायल किया है बल्कि वो जो दिमाग है ये जो सेंट्रल हमारा नर्वस सिस्टम है वो बाउंस बैक करेगा किसी और जो वाइटल ऑर्गन है मसलन लीवर पे। तो ये जो हमारी अकल है ये ऐसे है जैसे एक बाप हो और उसके साथ मासूम बच्चे हों जिन्हें कुछ नहीं पता किधर जाना है और रास्ते में जनाब बच्चों के अगवा वाले इर्द गिर्द लोग बैठे हुए हैं। वो बच्चों को डायरेक्ट काबू नहीं करते लेकिन बाप को वो सुला देते हैं। अब वो बच्चों को आराम से काबू कर सकते हैं। इसी तरह हमारे जो वाइटल ऑर्गन है ये बच्चों की तरह है, दिमाग जो है ये इनका बाप है। तो जो चीज़ डायरेक्ट उसके परफॉर्मेंस पे, दिमाग की परफॉर्मेंस पे, सेंट्रल प्लेस पे इफेक्ट हो रही हो, वो फिर अपनी इस टेंशन को रिलीव करने के लिए इसको बाउंस बैक करता है लेस वाइटल, चाहे कितने भी बाकी ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट हैं वो ब्रेन से लेस वाइटल है। इस वजह से जो है इसका साइड इफेक्ट्स होता है अल्कोहल का, उस अल्कोहल का जो इस मकदार में पी जाए कि आपकी अकल को जायल कर दे। अच्छा, इसमें जो है फ्रीक्वेंसी भी मैटर करती है अल्कोहल में। अगर एक शख्स इतनी पीता है कि उसकी अकल जायल नहीं होती लेकिन पीता दिन में 2-3 बार है तो वो भी इफेक्ट कर सकती है। उससे ये है कि वो कभी कभी दिल कर रहा है, ज़रूरत भी नहीं है और उसको वो स्किप करे। इससे ये है कि जो आपकी पावर एडिक्शन के खिलाफ यूज़ होती है वही पावर आपकी इन्फेक्शन के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ भी इस्तेमाल होती है। ये लेटेस्ट रिसर्च है। यानी कभी कभी आप किसी एडिक्शन को अचानक झटक के उससे बाहर निकलने की कोशिश करें। मुकम्मल अगर नहीं निकल सकते तो कभी कभी आप एक दिन स्किप करें, फिर आप उसमें इतनी लिमिट लें कि जिससे आपकी अकल को अकल जायल ना हो, तो फिर आपका जिगर महफूज रहेगा। और फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर रखें। इसके लिए हमारे बहुत सारे पेशेंट शवायाब हो रहे हैं क्योंकि एलोपैथी में इसका कोई खास इलाज नहीं है फैटी लीवर का। तो होम्योपैथी ऐसी मेडिसिन है जो बगैर केमिकल ड्रग्स के, बगैर साइड इफेक्ट के, बगैर सर्जरी के आपके जिगर की बेहतरीन हिफाजत कर सकती है। अगर फैटी लीवर डॉक्टर ने कहा है कि फैटी लीवर हो चुका है तो फिर यही इलाज बेहतरीन है जो आपको अपनाना चाहिए। मैं हूँ अबरार हुसैन, मेरा नंबर नोट कर लें। मिसी सागा में हमारा क्लिनिक है 6475531100। या मैं एक और ऐलान भी करना चाहता हूँ, हमने एएम रेडियो 5:30 पे जो है मंडे को 5 बजे से 6 बजे तक 1 घंटा पूरा इंटरटेनमेंट भी और हेल्थ के ऊपर हायर किया है। तो जो ये प्रोग्राम सुनते हैं वो ऑडियंस हमारी हर मंडे को 5 से 6 बजे एएम 5 से 6 बजे 5:30 चैनल है उस पे आप सुन सकते हैं। फिर एक बार मेरा नंबर नोट कर लें 6475531100। शुक्रिया,
0: बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, और नाल दी नाल अज दा प्रोग्राम तड़ता कसी पेश कर रहे हैं स्पैक्स एक्सप्रेस दे सहयोग नाल। स्पैक्स एक्सप्रेस तो तुसी किसे तरीके दे भी कॉम्प्रिहेंसिव आई ग्लासेस या तुसी कोई आई डिटेल्ड आई एग्जाम करवाना या बच्चियां दा कोई आई एग्जामिनेशन करवाना है तो बिल्कुल दस दिए कि इन्हां कोल अज दे रहे हैं जी। दोनों लोकेशन से डॉक्टर की टीम अवेलेबल हैगी है और नाल दी नाल तुसी वॉक इन भी कर सकते हैं या तुसी अपॉइंटमेंट बना के भी जिहड़ा जी जा सकते हैगे। और नाल दी नाल जिहड़ा जी असीं दस दईए कि ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਲੈਂਸਿਸ ਕਲਰਡ ਲੈਂਸਿਸ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੈਕਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਡੀਲਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ 35 ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਬਰੈਂਪਟਨ 410 ਐਂਡ ਸਟੀਲਸ ਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਮਾਰਟ ਵਾਲਾ ਪਲਾਜ਼ਾ। ਦੂਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 10635 ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਊ ਰੋਡ ਸੈਂਡਲਵੁੱਡ ਐਂਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਊ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੰਬਰ 905 400 9068888 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ 9054600888 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੈਣੀ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੈਣੀ ਜੀ ਫਰੋਮ ਟੋਪ ਚੋਇਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ 4168176500 ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਿੱਕਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਦਲਾ ਫੂਡ ਖਾਣਾ ਵਿਦ ਬੈਸਟ ਡਾਇਨਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਟਿੱਕਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀਆ 427 ਐਂਡ QEW ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸਾਥ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੀ ਮਨ ਪਸੰਦੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀਆ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਲਸ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੰਜਮ ਕੁਰੇਸ਼ੀ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਕਲੇਮ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵੀ ਕਲੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਨੰਬਰ 416-570-0157 ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

0: रात आ मैं छड़ दिनी आ। पर जनाब चले किथे हो?
1: मैं चलिया स्काईडोम ऑटो ते बॉडी सेंटर, जो सर्टिफाइड कोलिजन शॉप है, जो करनगे मेरी कार दी केयर, बेस्ट सर्विस ते फुल रिपेयर। एक्सीडेंट होने ते इंश्योरेंस कंपनी नाल डील भी करदे ने। स्काईडोम ग्रुप ऑफ कंपनीज पिछले 25 सालां तो तुहाडी सेवा विच।
0: भाई ते कारां दे नाल नाल बसां ते वड्डे ट्रकां दी रिपेयर ते बॉडी वर्क दा भी काम कीता जांदा है। फ्लीट वास्ते स्पेशल पैकेज ने।
1: कॉल करो 905-874-9878।
2: लाओ जी चक्को फिर खुशखबरी, ब्रैम्पटन निवासियां ले खुशखबरी। हुण जदों भी तुसी कैनेडियन, इंडियन या पाकिस्तानी ग्रोसरी खरीदना चाहो तो ब्रैम्पटन विच इंडियन फ्रूट लैंड दी चारों लोकेशनां विचों जिथे मर्जी आ जाओ, चाहे 15 फेंडोवे ब्रैम्पटन होवे, जां दूजी लोकेशन 45 डस्ट ड्राइव ब्रैम्पटन, या फिर तीजी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 ब्रैम्पटन इंडियन फ्रूट लैंड, ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 मेफिल रोड ब्रैम्पटन। ਵਧੀਆ ਗਰੋਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫਰੂਟ ਲੈਂਡ 905-456-9900।
3: चांदी की बैंगल्स और चांदी की पायल।
4: इतनी बस नहीं, जेंट्स ने चांदी के कड़े, चांदी की चेन, चांदी के ब्रेसलेट,
3: बर्तन और चांदी के किसी भी तरह का सामान लेने के लिए वन एंड ओनली सिल्वर हट।
4: फोर एंड अवनीजर द इंटरसेक्शन पे गुरुद्वारे बाय प्लाजा के बीच सिल्वर हट।
3: 6473393521
4: 6473395 4525 अवनीजर रोड ब्रैम्पटन सिल्वर हट।
5: जी दोस्तों, मेरे वालों यानी कि जगजीत महल वालों आप सब नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। तुसीं जुड़ चुके हो अपने मनपसंद प्रोग्राम सारंग दे विच। अज दे प्रोग्राम विच गल्लां बातां होणगीआं। अज दा साडा प्रोग्राम लाइव ऑन लोकेशन ग्रैंड ग्रैंड ग्रैंड फर्नीचर तों होण जा रिहा है। राजवीर जी उत्थे पहुँच चुके ने, थोड़े मिंटां दे विच आपां उहनां नूं ऑन एयर करके उहनां नाल फोन ते गल्लबात करन दी कोशिश करांगे। उत्थे की अपडेट आ इस वीकएंड दे उपर, उत्थे की नवीआं चीज़ां आईआं ने, ते की सानूं उत्थे डीलां मिलण वालीआं ने। इह गल बिल्कुल सच आ वी जदों वी ग्रैंड ग्रैंड ग्रैंड फर्नीचर दे उपर साडा लाइव ऑन लोकेशन हुंदा गा, उत्थों बहुत वड्डी मात्रा विच कस्टमर अपनी सेविंग करते हैं और बहुत वधिया प्रोडक्ट उतों खरीदते हैं। गे जिमें आप अज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, सूँ मैं दस देव कि अज का जो प्रोग्राम आ बहुत ही खास तो स्पैशल हो जा रहा है, क्योंकि बहुत सारिया नवी डील जगिया ने ग्रैंड ग्रैंड फर्नीचर तो सूँ मिलन जा रही ने। आप आम तौर पर सोचते हैं कि साड़ी जिंदगी देम तौर पर असी दो रिश्तों को बहुत ज़्यादा अहमियत दें, एक होंगी दोस्ती तो एक होंगी रिश्तेदारी। रिश्तेदारी ते दोस्ती दोवें रिश्तेदारी जिहड़ी सानू विरासत दे विच मिलदी आ, साडे खून चों मिलदी हैगी, और जिहड़ी दोस्ती हुंदी आ उह असीं खुद बणाउणी हैगी। सो आपां देखांगे भी रिश्ता जिहड़ा दोस्ती दा वधिया हुंदा जां रिश्तेदारी दा। सो अज दा जिहड़ा समां गा, अज दे समें दे विच बहुत सारे रिश्ते जां बहुत सारे दोस्त मित्र इदां दे ने जिहड़े साडे सोशल मीडिया के उपर ने, क्योंकि सोशल मीडिया का युग आ, हरेक बंदा अप कोई इंस्टाग्राम यूज़ करता, कोई फेसबुक यूज़ करता, कोई कोई होर अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म जो यूज़ करता गा। सो जिहड़े रिश्तेदार होंदे आगे वो सानू विरासत दे साडे खून तो मिलते है। तो तुसीं सोचो अपने आप दे विच वी तुहाडी जिहड़ी फ्रेंड लिस्ट की लिस्ट हैगी उहदे विच किन्ने सारे रिश्ते होणगे जिहड़े तुसीं ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਜਵੀਰ ਜੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਰਨੀਚਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਰਣਜੀਤ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਜਿਹੇ ਸੌਂਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡੀਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ।

0: Friday, September 18, 7 p.m. at the Living Arts Center, Mississauga.
1: पहला आया सी बड़ी मोहब्बत दी थी, उम्मीद कर रहा इस बार भी तुझे आशीर्वाद दोगे.
2: वे आ जा तो मैं हाल नचिए, नचिए बाहच बाहपा. वे आ जा तो मैं हाल नचिए.
0: For tickets, visit Ticketmaster. For information, call Singh Harjeet at 647-448-1000.
3: Hello, AM 532. तुसी सुन रहे हो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो.
4: टुडे विच लाइव गलबात कर ले, हुणे कॉल करो 905-564-6444.
3: 905-564-6444.
4: सुनते रहो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो. चलो AM 532.
5: रोकी, तू अपनी इंश्योरेंस किसको करवांदा यार?
6: भाई कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने.
5: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा.
6: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे, इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी. जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है. हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते.
7: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
6: 416-509-1509
7: और विजिट insuranceforyou.ca.
4: दोस्तों, देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो नू या चलो AM 530 ते 24/7 जिन्ने भी प्रोग्राम आउंदे ने उहनां नू सुनण वास्ते जां देश प्रदेश नू लाइव देखण वास्ते लॉग इन करो साडी वेबसाइट नू www.deshpradeshradio.com या www.deshpradeshtv.com. लाइव सुनना चाहुंदे लाइव ते क्लिक कर लो, जे वाच करना चाहुंदे आ तां ओह ते क्लिक करो, जां फिर अपने IPTV बॉक्स दे उत्ते पंजाबी सैक्शन क्लिक करो, ओहदे उत्ते जाके देश प्रदेश टीवी नू क्लिक करो, ओहते तुसीं सुन भी सकदे हो, वेख भी सकदे हो 24/7.
8: देयर आर सिंगर्स, देयर आर परफॉर्मर्स, एंड देन देयर आर लेजेंड्स. That has defined generations. The one and only Rahat Fateh Ali Khan, live in Toronto. With Shah Zaman Ali Khan, Sunday, September 27th at Scotiabank Arena. Presented by True Sound Live and Cellular Point. Rahat Fateh Ali Khan and Shah Zaman Ali Khan live in Toronto. For tickets, visit Ticketmaster.

0: करते हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई।
1: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तों ही करवाई है।
2: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तों वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानूं सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने। पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-453-3381 ते 416-457-3381 ते।
0: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो। बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाओगे। हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381।
3: तानू माण है कैनेडियन होण दा ते कैनेडियन होण दे नाते सोफा मार्ट ते कैसा लेदर जेडे के इको ओनर ने और कस्टम मेड सोफे तैयार करदे ने कैनेडियन मेड। अपने घर दे लिविंग रूम दी गिनती मिनती करके लेके जाओ ते हन सा सोफा तैयार करवाओ। 4 सीटा वाला, 5 सीटा वाला तुहाडी अपनी मर्जी आ। 11x11 10x10 दा सोफा सेट तैयार करवा सकदे हो। इन्हां दी फैक्ट्री है 120 डेल्टा पार्क, उत्थे बहुत वड्डा शोरूम है ते पहला शोरूम हैगा 24 रीगन रोड ब्रैम्पटन। नंबर है परमजीत कौर होरां दा 905-792-8053 905-792-8053। सोफा मार्ट और कैसा लेदर इको ही कंपनी दा नाम।
4: हाय चूहा ते कॉकरोच भी, सुन लो मेरी गल, मैं इस किचन च खाना बनाना ही नहीं
5: है। फिर कॉकरोच जो है वो हाले महीना पहला ना ट्रीटमेंट कराई सी।
4: मैं तेरा पहला ही कहा सी सस्ते दे चक्कर च ना पो, हुण उपरो बेसमेंट वाले बेड बग दी कंप्लेंट हुई करी जांदे आ।
5: ओ मैं ता कहना घर ही बेच दिंदे आ।
6: आप घर चो बाहर क्यों जाना, चूहे कॉकरोचां नू कड्डो। टोरंटो पेस्ट अरेस्ट नू कॉल करो। जेड़े छोटे तो छोटे घर तो लेके वड्डियां बिल्डिंग्स, रेस्टोरेंट, होटल्स, मोटल्स, नर्सिंग होम्स विच वी काम करते हैं। सस्ते दा दावा तो नहीं पर कम दी गारंटी है। 647-515-8000 टोरंटो पेस्ट अरेस्ट, सिक्के बंद कम दी गारंटी। 647-515-8000।
7: हेलो AM 530 तो तुसी सुन रहे हो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो।
3: टुडे विच लाइव गलबात करन लई हुणे कॉल करो 905-564-6444।
7: 905-564-6444।
3: सुनते रहो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो, चलो AM 530 तो। की तुसी अपनी इंश्योरेंस बहुत ज्यादा पे करदे हो? वरी ना, एक नाम असी तुहानू दसदे हां, मनु शर्मा होरंदा हां। ए तुहानू आटो, होम, कमर्शियल, बिजनेस इंश्योरेंस दी बेस्ट डील लेके देणगे। ए तुहानू अप टू 35% डिस्काउंट लेके देणगे। जेकर तुसी प्रोफेशनल लोक हो जिवे इंजीनियर, टीचर, नर्सेस, डॉक्टर आदि, तां होर भी डिस्काउंट मिलेगा। लंबे समय तो मनु शर्मा होरी कम्युनिटी दे विच आटो, होम, कमर्शियल दे बिजनेस इंश्योर कर रहे ने। अज ही इन्हां नूं कॉल कर लो 289-952-9532 299-952-9532। मनु शर्मा होरां दा टेलीफोन नंबर है, ये नोट कर लो। सस्ती ग्रोसरी और हरियां ताजियां सब्जियां लई शहर दे विच इको एक नाम सत शिखावां तों इंडियन फ्रूट लैंड ते नाल ही है इन्हां दी तंदूरी ग्रिल बाहरले पासे। इत्थों तुहानूं बणिया बणिया हर फूड मिलदा है, नाल दी नाल रॉ मीट भी और मैरीनेट कीता मीट भी तुसीं लिया सकदे हो। अपने नेड़ली लोकेशन ते आओ 45 डस्क ड्राइव, 15 फेंडर वे ब्रैम्पटन, 9985 मकवीन ड्राइव ब्रैम्पटन, 1465 मेफील्ड रोड ब्रैम्पटन, 33 फार्ली ड्राइव गोल्फ और 600 हैस्पल रोड कैम्ब्रिज, नमी खुनी ब्रांच 25 सेंट्रल बुड पार्कवे कैनेडी के सेंट्रल बुड पार्कवे के नेड़े। आओ हरियां ताजियां सब्जियां और जी सस्ती ग्रोसरी वास्ते पहुंचो इंडियन फ्रूट लैंड से।